0: सच कहे जे होंगा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: खुरु दी पानी सच है।

Pio, डैडी, पापा, बड़े नाम ने इस शख्स दे। अजकल समा थोड़ा जिहा मॉडर्न हो गया, पर कोई समा सी कि असी अपने बुजुर्गों नूं, अपने बापू नूं प्यार भी नहीं जिता सकते सी। सानू जिताउणा आउंदा नहीं सी, सानू बापू नूं कहना नहीं आउंदा सी कि बापू यार मैनूं बहुत चंगा लगदा तूं, बहुत मुहब्बत करदा मैं तैनूं। इदां ही बापू मेहनत करदा करदा मिट्टी नाल मिट्टी हुंदा हुंदा मिट्टी हो गया, एक दिन सिर्फ यादां छड्ड गया पिछे।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट। यहाँ पहुँचो 10,970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस, पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां, फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम। ते हुण आलू, गोभी, मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच, अमृतसरी कुलचा विद चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399। सब्जी मार्केट।

0: ਟੈਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜੁਲਾਈ 31 ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੈਟਰਡੇ ਆਗਸਟ 1 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੌਕਰ ਕਬੱਡੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਗੱਤਕਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਕੈਨੇਡਾ .ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 6478070007 ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ
1: ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करां
2: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
3: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
4: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
2: कॉल करो जे एन गैरी नूं
4: 905-459-5533
2: 905-459-5533 ते
4: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
0: टीम 4 एंटरटेनमेंट पेश करदे ने पंजाबी विरसा 2026
5: ओए सावण चढ़िया ती
0: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नूं थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: sun, jump our sun, grow our sun, happy sun, not a toasty beast sun. Bole, sonny hall, sassier car.
1: मम्मी पापा दे वीजे लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हम तीन लोकेशन तो सर्व कर देने 2 in Brampton 1850 Elgin Road Etobicoke। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है।

0: और ढाणी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: वैल्यू जे तुसी वधाउणी है या एक्स्ट्रा इनकम लई लीगल बेसमेंट तैयार करवानी होवे या अपने घर नूं नवीं अते खूबसूरत लुक देनी है तां संपर्क करो नानक रेनोवेशन दे नाल। लीगल बेसमेंट, बेसमेंट फिनिशिंग, कॉन्क्रीट ड्राइववे, पैटियो या कोई भी रेनोवेशन दा काम नानक रेनोवेशन। एक्सपीरियंस टीम समय सिर काम करदे ने, बहुत ही रीजनेबल रेट। फ्री एस्टिमेट ले कांटेक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293 416-902-9293। नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपनेयां नूं पूरा करनगे। SS Lawn Care थोड़ी लॉन दी संभाल दे लई बेस्ट चॉइस। तुसी नवा घा लगवाना चाहुंदे हो या सॉड इंस्टॉल करवानी चाहुंदे हो, सीजनल ग्रास कटिंग, फर्टिलाइजर, वीड दी ट्रीटमेंट अते हर एक किस्म दी लॉन दी मरम्मत दे लई तैयार हन। फ्लावर बेड बनवाओ या साफ करवाओ अते प्लांट्स दी ट्रिमिंग भी करदे हन, चाहे होवे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फार्म हाउस दा काम। अज ही कॉल करो 437-655-1984 437-655-1984।
3: थैंक यू सो मच जी। 905-673-3337 जुड़े हो पंजाबी लहरां दे नाल। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू, मैनूं एक वीर दा मैसेज आया, कहिंदे वीरे मैं शायर तो नहीं, जब से देखा तुम्हें शायरी आ गई। क्या बात है। 905-673-3337 905-673-3337 दे जुड़े हुए हो और गाना भी सुनना बनता आ शायर दी। जदों गल करदे आपां अजकल क्यों नहीं लिखते आपां शायर, जिवें चलो सौरभ रतन जी ने बहुत सोहना कहा कि असी एहसास कितना कितने साडा घटदा जा रहा। तुसी लिखते हो यार, लिख के तो देखो। अच्छा तुसी अपने आप नूं झंझोड़ोगे ना, अंदर एक थोड़े शायर बैठा उन्हूं हिलाओ माड़ा मोटा, टाइम दी कॉफी कॉफी पिलाओ, उठूगा, उन्हें लिख लेना है, कोशिश करो। वीकेंड दी शुरुआत हो चुकी है, लॉन्ग वीकेंड दी। अपने सोहणे नूं, अपने प्यारे नूं, अपने महबूब नूं, अपने सज्जन नूं लिखो दो लाइनां, अंदरों कढ़ो, अपने शायर नूं कहो कि उठ बई अपने वास्ते लिखो। पर जरूरी नहीं, तुसी अपने माँ बाप बारे भी लिख सकते हो, अपने भैणां भरावां बारे भी लिख सकते हो। बस शायर नूं उठाउण दी गल आ, लिखना जरूरी आ, क्योंकि लिखण नाल थोड़े अहसास जिंदा होणगे ते एक चंगे इंसान दी, ज्यौंदे जागदे इंसान दी निशानी आ कि उहदे अहसास जिंदा होण। 905-673-3337 माफ करना रणजीत सिंह सदी माफ करना यार सदियोरा। एनी वे बाई जी, थोड़ा नाम मैनू पढ़ने बड़ी दिक्कत आ रही है। बाई रणजीत सिंह होना वालों फरमाइश की थी ये सॉन्ग दी।
4: मैं शायर तो नहीं,

क्या बात है यार, 905-673-37 यार। यार शायरा नू समझना बड़ा मुश्किल है। शायरा की जिहड़ी मैं लगता कि इन्हां दी जिहड़ी किस्म आ ना वह वक्री आ। बड़े नाजुक होंदे ने, बड़े कोमल होंदे ने, बड़े सुहिरद होंदे ने, ते इंसान बहुत प्यारे होंदे ने। थोड़े च कोई लिखदा, कोई शायर हैगा तो दस्यो यार, 905-673-37। ऐसे प्यारे इंसान ने गलबात करन दा

सो 905-673-3390-5673-3337 और फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत है जी। अज उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ दी कला दे विच होंगे। अज दे खूबसूरत दिन तुम इंजॉय कर रहे होंगे।

0: going. Jaldi poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद.
2: I love it.
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
1: हम सबकी पसंद.
4: Radio Awaaz.
1: Every morning from Monday to Friday, 9 to 10 and Saturday, 10 to 1 on AM 530. Non-stop calls, non-stop talks. Promote your business with us. Contact 416-518-3200.
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
6: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.

प्रकाश खूबसूरत स्वेर द खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशकुवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपौ निरवैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसीं चलदे रहोगे। तो इसी उम्मीद नाल एक बार फिर तो कि अज का दिन बहुत खूबसूरत चढ़दी कला वाला निरपौ निरवैर है। तो अज के दिन के भी असी यह तय करना कि असी किन्नी किसी लिए ईरखा किसी लिए मतभेद किसी लिए उन्हों नीवा उच्चा दिखाने की कोशिश करनी है कि अपने आप के उपर आप अज फोकस होकर चलना। दैट्स ऑल अबाउट द डे। तो तुसी अपना दिन किवें बजा रहे हो ये तुहाडे ते डिपेंड करेगा। तो तुसी अज दे इस पॉजिटिविटी भरे हुए शोध विच हमेशा शामिल होंगे हो। मैं अमनदीप सिंह बैनीपाल, बहुत सारे लोग नमें जिहड़े सानूं सुन रहे हैं, तकरीबन डेढ़ दहाके तो 15 साल प्लस तो ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर के मैं जो रेडियो काम कर रहा है और सारे के रूबरू हो रहा हर रोज़ प्राइम टाइम के और सैटरडे बिजीएसट टाइम जिस 10 बजे तो लैके 1 बजे तक लगातार 3 घंटे सुनते हो भी शामिल होंगे हो। स्टूडियोज़ का नंबर हमेशा तरह 905-673-3337। मेरे नाल किसी ने कॉन्टैक्ट करना, अपना बिजनेस प्रमोट करना, देर आर टनस ऑफ कॉल्स मैनू थोड़े आते हैं। तुसी जरूर अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए प्राइम टाइम रश आवर च तुसी साढ़े नाल 416-518-3200 416-518-3200 416-518-3200 गलबात कर सकते हो।

0: A to Z किचन कैबिनेट बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की पाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
4: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
5: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
4: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 3100
5: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
6: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m. For more information call 647-448-1000 Toronto's number one station AM

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो कि टिकटा कदों दियां चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32 55 80
4: 905-450-2828 905-450-2828
3: 905-450-2828

0: विजन वैनिटीज से न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नहीं नहीं, वैनिटीज दी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
1: कंडीशंस अप्लाई।
2: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
3: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
4: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

0: Everest Transportation hire kar rahe ne cross border AC drivers bahut hi shandar opportunity dedicated auto parts daily home runs same truck the trailers lagbhag 10000 mile per week milenge starting from Kushawa Etobicoke ate Bolton je tuhade kol vi hai valid AC license clean CBOR the abstract US border eligibility the fast card ta aaj hi Everest Transportation nu call karo 9058462229 extend है 4 या फिर 9053348222 यानी 905-846-2029 ते या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4
1: ताया साडा मीट मच्छी दा बड़ा ही शौकीन आ कहंदा पार्टी विच नॉन वेज स्पेशल होना चाहिदा बस वे असी करदा फोन पंजाबी बाय नेचर वालेया नु ओ करे आके लाइव कुकिंग करके गए पंजाबी बाय नेचर वालेया नु कॉल करियो
2: पंजाबी बाय नेचर एयरपोर्ट एंड वे टेक गो रूट 9057944667
3: रूपा बराड़ पांच वकीलां दी वड्डी एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट टीम है एक्सीडेंट तो बाद तुहाडे हक्कां लई खड़दे ने पांच वकीलां दी महारत एक्सपीरियंस टीम नू पता है कि इंश्योरेंस कंपनी नाल किवें निजठिया जांदा है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर इन्हां ने अपने क्लाइंट्स नू इंश्योरेंस कंपनी तो दवाए ने अपनी फीस केस सेटल होण तो बाद लैंदे ने रूपा बराड़ 416-991-5939 416-991-5939

0: इंडियन फ्रूटलैंड वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
1: ले इको जगह तो कित्थे सारा कुछ मिलता है। दो चीजा लई एक जगह रुको, फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको।
0: इंडियन फ्रूटलैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूटलैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
2: ओ उरे आ इधर ओए बंटी, मैनू ए दस कि तेरी जमात विच सब तो मेहनती विद्यार्थी केड़ा?
3: आ पापा मैं ही हां।
2: अच्छा ओ कदा?
3: क्योंकि सारे बच्चे तो सीट ते बैठने, सिर्फ मैं ही पीछे कान फड़ के खड़ा रहना
2: है।

0: सारे घर का काम तो मैं ही करती हूं, हुन कारपेट तुसी क्लीन करोगे?
1: जेड़े काम लई इतनी बढ़िया प्रोफेशनल हेल्प मिलती होवे वो मैं क्यों करा? मैं ते अमन नु फोन मिलाऊंगा 416-277-4416 ते।
2: फिर तुसी भी कॉल करो बेस्ट डक्ट एंड कारपेट क्लीनिंग। पावे होवे डक्ट क्लीनिंग, रेजिडेंशियल, बैंक्वेट या ऑफिस कारपेट क्लीनिंग, कॉल बेस्ट डक्ट एंड कारपेट क्लीनिंग 416-277-4616।
3: कोई एहो जी जगह दसो जिथे बैठ के मैं फैमिली दे नाल फूड भी एंजॉय कर सका, ते कोई पार्टी करनी होवे ते तां भी उत्थे जावा।
4: तां फिर टिक्का जंक्शन ही जाई, ए है टॉप क्लास फैमिली रेस्टोरेंट, 100 लोकां दी सीटिंग, 100 तो 125 दी कैपेसिटी वाला बैंकेट हॉल भी। वीकडे सवेरे 11 बजे तो राती 11 बजे तक, ते फ्राइडे तो सैटरडे सवेरे 11 बजे तो तड़के 2 बजे तक, डीजे नाइट दे नाल।
3: सुपर वीआईपी डील्स ते लई मेंबरशिप भी ले सकदे हो, कॉल 6474294040। टिक्का जंक्शन 2958 Queen Street East, Unit 26, Brampton.

0: इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
3: और विजिट इंश्योरेंस फॉर यू डॉट सी ए।
0: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहदे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेयर।
5: मैं किथे बैठे आ करूं, आओ जट खब्बी सीट ते बंदूक रख दे।
4: ट्रू साउंड लाइव एंड सेल्यूलर पॉइंट प्रेजेंट एमी वेयर लाइव इन टोरंटो। At Great Canadian Casino Resort. Toronto Valley, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
0: चलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, यानी कि देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है, ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई अपने काम कार की एडवरटाइज करनी हो अफोर्डेबल पैकेज लई आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381, 416-457-3381, जां तेजिंदर सिंह सिद्धू देना कॉल करो 416-725-2551, 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 days a week तुहाडे अंग संग।

0: मुझे पर आई थिंक मैं एक दो वर्ड्स ऊपर नीचे करते, बट गाना बड़ा प्यारा, पर जरूर सुनांगे। फिलहाल तुसी गाना सुनो। नेक्स्ट कुछ समथिंग सीगा भी गुस्से ना होया कर सहेलियां दे सामने, एंड अगे किसी कली दे भावें गोली मार दी, समथिंग कुछ ऐदा दा गाना सी, बट गाना मैनू मिल गया। आपां सुनदे हां कॉलर ने 5094। हांजी बहुत शुक्रिया। कदी कदी मैं कोई गाना जिवे तुहानूं सोहना जिहा लगे ना, फिर ओहदा थोड़ा थोड़ा गुणगुणा लेना चाहीदा। मैनूं कदी कदी कोई गाना पसंद आवे, मतलब पसंद तां चलो बहुत सारे गाने हुंदे ने, जदों कोई एकदम जो कोई गाना इधर सामने आ जाए, एक लाइन जी थोड़े सामने आ जाए ना, फिर कदी कदी वधिया लगता। बट एनीवेज लो फिर आप नैक्सट फरमाइशी गाना सुनीए। ये हैगे ने सिंगर शमशेर चीमा, बच्चन बेदिल जी का गाना लिखा हुआ, तो लो फिर आप सुनते हैं। तो ये नोक चोक जी आ मेरे ख्याल से कोई गाने के सुनते आप, तुम भी सुनो, इंजॉय करो, तो सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
1: हाँ मैं तेरे नाल नाराज हाँ।

रही है या फिर निगाह घट गई है होर ज्यादा, तुसीं इन्हां दे कोल पहुंचो, अपना आई एग्जाम दो। डॉक्टर्स तुहाडे लई 6 दिन अवेलेबल रहिंदे ने वीक दे विच, सिर्फ मंडे वाले दिन छुट्टी करदे ने, ट्यूजडे तो लैके फ्राइडे तक सवेरे 11 बजे ओपन हो जाते हैं, शाम के 7 बजे तक तुहानू डॉक्टर्स मिल सकते हैं। सैटरडे नू यानी कल नू जाना होवे तां सवेरे 11 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक मिलणगे। संडे नू दोपहर के 12 बजे तो लैके शाम के 5 बजे तक तुहाडे लई डॉक्टर्स अवेलेबल रहिंदे ने। मैकवीन एंड मेफील्ड इंटरसैक्शन ते लोकेटड ने, क्लीयर व्यू आई केयर, 11615 मैकवीन ड्राइव, यूनिट नंबर 34 ब्रैम्पटन दे विच। ते नंबर इन्हां दा 905-913-4545, 905-913-4545 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਆਈ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਐਂਡ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁੰਦਰੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करदे आ। सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
0: तुहाडियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफिंग दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, आज ही अपनी कार नूं लेके आओ। हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े, नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल, आज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नूं 905-857-5796, 905-857-7596। ANJ ऑटो रिपेयर, जेडे के बोल्टन अते ब्रैम्पटन दे बॉर्डर ते ने।
4: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ
7: दिस इज AM 530 CHLO AM सर्विंग ब्रैम्पटन, मिसिसॉगा, टोरंटो, द GTA एंड द वर्ल्ड एट AM530.ca। The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: पैसे पे कर रहे हो, बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।

0: क्या बात है, वाजी वाह, शानदार गीत। ते 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात हो रही है। गाना दसो जा दिल दे उत्ते, जिहड़ी शायरी दे विच दिल भी आंदा होवे उहदी गलबात। आपां दिल दी गल ही करनी अज, फ्राइडे वाली शाम ते लौंग वीकेंड है। ते कहिंदे आ दिल दे रिश्ते किस्मत नाल बणदे ने, दिल दे रिश्ते किस्मत नाल बणदे ने, नहीं ते मुलाकातां ते रोज़ हजारां नाल हुंदियां। सही गल है, दिन च सानू बंदे बहुत मिलते हैं, पर जिते दिल मिल जाण वह रिश्ते फिर वधिया निभदे भी है। कॉल दे बाद चलते हैं जी। सत श्री अकाल। हैलो।
1: हैलो, सत श्री अकाल जी।
0: जी सर, किवें हो?
1: बस वधिया सर। ए गुरदास मान जी का गाना जी, 31 दिसंबर नू आया सीगा दूरदर्शन दे उत्ते, जो पहली बार आया सी, जित तक मैनू याद हैगा भाई।
0: अच्छा, वाह जी वाह, तुहानू याद है, नवे साल दे मौके ते आया सी।
1: पर
0: कमाल दी गल है, तुहानू सन याद है केड़े सन सी कुछ?
1: हां मैनू इन्ना याद है, मैं तुहानू इह वी दस दिंदा वा, एक मिनट, मेरा ख्याल
0: दूरदर्शन 80-81 ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: दूरदर्शन ते पहली बार डबली नाल उन्हां ने बजाया सी गाना।
0: क्या बात है, वाह, देख लो यादां जुड़ियां हुंदियां किसे ना किसे गीत नाल, के नहीं? खास करके मैनूं लगदा तुसीं जी जी905-673-3337 905-673-3337 अगली कॉल 86-62 जी। सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल, किवें हो जी?
2: वधिया वधिया, तुसीं सुनाओ?
0: बहुत वधिया जी।
2: भाई टेस्ला टीवी दी आई सी शहर मशहूरी।
0: पक्की गल है?
2: हां जी पक्की गल है।
0: टेस्ला?
2: हां टेस्ला,
0: नहीं टेस्ला नहीं, सॉरी टेक्सला।
2: कलसी
0: पंप दी मलकीत सिंह दी।
2: हुण
0: पिंडां विच गल्लां कलसी पंप दिया। क्या बात, देख लो उस टाइम ते भी ऐड घटो घट 30-35 साल ते हो गए होने ज्यादा ही, जो मशहूरियां चल दिया सी टीवी ते गाने वहां गांदिया सी बन के।
2: हुण तां भाजी अगे ना करन ने, उदों तां देखी दियां सी मशहूरियां भी, देखी दियां सी।
0: आहो उस टाइम रोक रोक के दोबारा देखी दिया सी, हुण तां हुण VCR है नी ना। चलो बहुत शुक्रिया वीरे, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। देखिए लागे किते ओ ऐड तां नहीं इह

0: और थाने स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।